खनाई तौने रंग सकने ताक बखु आसुक चरा दे खना लाइखा दुई मणि रिजाबमु तबुकनि बेचिबु जों हाबलायसिनाय दिरिनि सालकामा पान्दाव रांसाकनि ताखु बखु दिनै जों दिनैनि सालकामा पान्दाव सालायनाय जों जतन सायमानो चिनि भारत हादरनि दैचिनि एसिया महादेशनि पुइला नोबेल सकात माननाय सैग्रोंनि बेचेबो आबो चिनि भारत हाक्तरनिनो बोजेफुरु नोबेल सकात मानखा आ जराव एशियानि अंगै तेकेबो मानियाखो पुइला बनो कग्रबायो नोबेल सकात माननाय जुग जतन सिनिओ साइमानो ते बिनि सिचाक रोखनो जों जत रुंखतलन जों मा पड़ीगो रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर मिया आचाईमणी साल मिया साल चुकु एप्रिल मियानी सालो लाइथांनाय बिशी बिनी आचाईमणी विशिंखा चिचारा दक्तिसा ख्रीष्ट विश्वनी साल नैचिबा बैशाख एवं बांगला बैखे पचिसे बैशाख तई इंग्रेजी आबो आ विश्व हंके सालचिनी मे तई तकलैनी विश्व हंके सालचुको मे ओ कलाइख्या बिनी आचाईमणी साल बिनी आचाईमणी साल नुरुगे बिनि लांमाव तम तम ख्लायलांखा तमनि बागै आसुग बुमुं गोनांखा ते बो बिनि सेजा कग्रबायबाय बिनि बसंनो बिनि मानि ककनो ते इ हायुंनो बाहायखिसोन आरसारखा आपनोरगै जों सायमानलायने जतन सायमानो बिनि कक हायफानो सितितै बाक्सा काहामखे चेरि नायनानि एबा बिनि ककनो जों चेथ्रगुइ बहाय ते खरकसा आसायरनानि इंगेखेबा आसायनानि बखा गोनां खरक बुसुक दं आबरकनो जों मा चायदकनाय बिनि नाहारमुं बमहाय विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि नाहारमुं बबहाय बुतामनाय मानि भारत हाक्तरो आसायै आजराव बिनि आजराव बिनि चास्लक सिक्ला ते बिनि चाक्रानि उमरो भारत हाक्तरनि जराव बप्तिहाय तमुंगो बो बमतिहाय वानसुकमुंबाय बिनि सैमुंनो सिगांगै दलांखा कायसा सैमुं दफानो हदानो एबा बिनि नाहारमुंनो बाहायखे मुखथां दुबु आपनोरखै जों सालायनाय ते सिलायनाय विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि दादाक्सिदा ककलाम तुमुंनो सायमानै दंखानके नरक जतनन कयनाय ककदुक ग्रंदि ककदुक नम्बर 2326253 स्टुडियोनि तिनिनि पान्दाव तंगो आं उषा आं बाय नरक दादाक सिदा ग्रंगि मानौ तिनिनि सालकामा पान्दाव सालकामा पान्दानि कक प्रथमा विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर बिनि वानसुकमा ते बिनि चाइतकमा बिनि थाबेंमा बिनि सिकांगमानि ककरक बेलाय वानामा सिंसा रवीन्द्रनाथ ठाकुर बो विश्वकवि एबा ओ हायुंनि बेचेपनि सिनाय एबा सैक्रिं रकनि बिसिं बेलाय खुरसा जाखनाय कायसा बुमुं बो चिचारा दक चिसा ख्रीष्ट बिसिनि 7 तारिख मे कलकातानि जोरासाकुनि ठाकुर बाड़ीओ एबा ठाकुर रोगनी नुखुंगो बो आचायो बो बिनि सैमुं बाय इ हायुंनो गोप्लाय ख्लायलांखा बिनि सैमुं बाय बिनि मानिकक बांग्ला ककनो हायुं गोनांगै बो सिनिरखा जतनिस्लाय कतर कक खे

खनाइदोने रंगसकनी ताकुबुखु ताबु खनाबाइदि साख्रब हामग्रायनि कगो मेलेरिया ब्यामानरगै ककथायसे थायनि साबसुत्रा खाइ दंग्या वातै एबा सातुं बेलाय मान्जा खाहानके दै हामया बाइ दुखु खाहानके नखथारनि गानागिनि ओ थाम्पुइ एरजाबनाय दै गेलेक जाब्रा बब्रा कसकताय एनोफिलिसनि थाम्पुइ बुरि बाइ वारजा खाहानके मेलेरिया ब्यामारंगो गोलैसावै लोमजा कासाव कांनै कांथाम रोजाय चुमरिबो गोलैमानि हामया बैसाग साग्रबमानि बेलाय दै बख्रक बेलाय सानाय किसाखेनो दै कांगो किसा मिसा गुजुगनाय कुलुम सारिउ थांनाय हाइफानो तेउसा कुलुम कासाफिनाय तबुकनि अमल रगो गोलैयावैबो मेलेरियानि कुलुम कासामानि नुगजाखौ मेलेरिया दालथाम दालब्रै नुगजाखौ आबुनि बागै कुलुम ओंखाहानखेनो एबा लुमखाहानखेनो थै आन्जगै नाहारनानै नांगौ साखनायनि रोगनि ककनि बिसिंतै दङै जेसके फानो बिथिब्राय जानानै नांनाय आफ्नो कारिबो नगमानथकमानि रमदि बासक बलाय तुलसी बलाय सिरतानि बलाय गुलन्च कटकि तै खेत पाप्रानि बलाय रुवै लिटार कायसा दैयो रुवै मुथुं काहानखे आबो सारा ग्राम ओंगै तंसानि सानि आबनो कारिगुइ नारगै सालब्रुम ब्रुम आबनो गोजां रुवै सालब्रुम ब्रुम फुंसारि काप आदा खलायि मधु सापुलै आबो नोंखा हानखे मेलेरिया ब्यामानि बागै बेलाय जाउनि साजागौ डाक्टिनो गेलेनाय मानै मा जानाय आरोनि बिसिं माइ जायावै आटानि रुटि रक्सा खाहानखेनो मेलेरिया ब्यामारफोरु बेलायनो जाखगौ होनै साजागौ रुटि दाल दै गुबुननि मैखोदों थाइगोथों दालो सामब्रा रगबो जावै मानो मेलेरिया ओंयावै दंनानि बागै दाम दाम खलायथाय आबंखा आगुलिओ लाबिसाइट एबा कामि आमसायो डिडिटि स्प्रे खालायनानै थांफुरु स्प्रे खालायनानै थांनाय दं जेसके फानो बेलाय गाहामखे चुबानानै नांनाय डिडिटि स्प्रे खायमानि हाथी चिनि बिसिंगो नख एबा देवाल रग तालेपादि ओंयाखेबा रं रग तारदि टायार गोजाम तोक कचो बाल्टि गोबाय खुमनि टप गोबाय नारिकेरा माला गोबाय आमतिहाय मानै रगो किसामिसा दै बाथाकनानि तारदि न गान्तिनि गानागिनि रग तुमुं हाखर रग तंखाहानखे आबनो मुथुबै खिबिदि न गान्तिनि गानागिनिओ दै केलेक एबा दै बाथाक जाखनाय जागा रग तातनिदि सालतै हर जेफ्रुपानो थुफुरु गुन्दा सोंगै थुनानि खलायदि लुमखाहानखे थै आन्जगै नाहारदि तुमुं मेलेरियानि यं मान्जाखाहानखे साखनायनि रगनि ककनि बिसिंतै दंगै बिथिब्राय जानानि खायदि नखनि नख गान्दिनि गानागिनि साफ सुथ्रा खायदनदि दैता बाथाग्रोदि हाखर चिकन चिकन रगनो मुथुबै खिबिदि दै केलेक तुमुंनो ओंखाहानखे आजागाव थाम्पुइ एर' दै थाम्पुइ एनोफिलिस होनै थाम्पुइ बुरिबाय वार जाखाहानखे मेलेरिया बेमार ओंगो आसुगचरा दिनैनि साखामख्रायनि कगो मेलेरिया बेमारनो रोगै कक थाइसा थाइनै खोनाबायखा

आ जरा नि जे नबार शिपसा मानिगो रक्षणशील उंगे खेबा खलबजाक उंगे खेबा कैसा ते कैसानो दाम रोगी उंगे खेबा चिकन खाई उक्लक खाई तनजाक आ जरानी आ समाजनी आ नाहार मुंगो रवींद्रनाथ नारी शिक्षा उंगे खेबा बुरी रकनी रंग नांगो जे नुखुंगो बुरी रक जतनी सिलाई गबां कुक सिजाक नुकजाक सैमानजाक एबा चाइतकजाक बुरी रकनो नुखुंग बेलाय नायथतो ख्लाई तिसाई तलांगमानो अककनो ते बुरी रकनी फियोकजाक लांगमानो बुरी रकनी फियोकजाक लांगमानी बिसिंतै बुसकां सकांगै थांगमानी बिसिंतै नो समाज एबा बड़ रकनी जे थांगसुं अंगेखेबा बड़ रकनी जे वानसुकमुं हदानी तमुं चामुं रक स्लाय जागै मानो हुनै रवींद्रनाथ पैतुख्लायो बुरी रकनी रों एबा बुरी रकनी लांगमानी चुंसासा पहरनि बागै रवींद्रनाथ लांगमा कुसुंसानो बो जबानी याप्री रमखा बिनि सैमुंनि बिसिंते बुरी रकनो तामनि बागै फोरोंनानै नां एबा बुरी रकनी नाहार मुंगो रों एखेबा सिसामुं तामनि बागै नां बो पैतुख्लायो ओ हासाकाओ चलारक बै बाक्सा बुरी रकबो बाक्सा ख्लायि बरकनि रोंनि सेब माननानि नांथाय ते बेबाक हदानि सेब साब उंगेखेबा मानथाय सक्ताय रोंनि बेचेपुंथुन सा खामनि बेचेपुंथुन रां रि हदा बेबाकनि बेचेबनो बुरी रकबो चलारक बै बाक्सा मनुष्य होनजागै बरकनि बरम याफार जाखथुन তে বরকনি মানথাই সক্তাই বেবাকনো আবহাই বাক্সা অংথুং নেই বিনি জবানি ইয়াপ্রি আবসং দাদাক সিদাক নুকু রাংসাকনি দাকুবুকু শান্তি নিকেতনো ব রং তামনি বাকি অবনরগী ব ওয়ানসুক জাকনাই বাহাইখে নারখা চিচুকুরা চার খ্রিস্ট বিশিও শান্তি নিকেতনো পুইলা ब्रै रकनी बागै सिमिनो जुदा ख्लायिबो रोंनक सिनामो आबो उलनि जराओ विश्वभारती ओंगै चलातै ब्रै रकनी बागै आबो याफारजागौ फियाबा सानानि थांखे एबा खुरसानानि थांखा नोंखे शान्तिनिकेतनो पुइलाबो ब्रै रकनी बागैनो पुइलाबो रोंनक सिनामो आबोनो उलो विश्वभारती ओंगै आजागाव चलाबो परि माननाय ओंगेखे बुरी रकबो परि माननाय ओंगै जत्नि बागैनो याफारजागौ बुरी रकनि बागै ओंथुन ओंगेखेबा चला रकनि बागै ओंथुन जे को कारिकुलार एक्टिभिटिस एबा जों रोंनि बेचेबो गुबुननि सामुं सोरोंमुं आ बेचेबोबो रवींद्रनाथ ठाकुरनि वानसुकमुं बेलायखेनो सोगांजा रवींद्रनाथ ठाकुर बुरी रकनि बागै बिनि सयसिमुं थिकेमुं ते हदा हामक्रायनि बेचेबो हदा रांथंनि बेचेबो हदा रोंनि बेचेबो बो ससियेल साइन्सनि लगि लगि रोजाबमुं सिनाममुं वामुं सैमुं ताकमुं लुपमुं आबो रकनो बो बेलायखेनो बो मुलाजार लांखा आकक रकनो वानसुक हरैनायदि তাবুকনি অ জরাও বাঁচাগুই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি আ জরানি কক বাই তাবুকনি চালাই শিকলা শিকলি রকনি কক নব ওয়ানসুক হরিনাই দি চিনি ভারত হাক্তর ন কারে জুদা যে কুচুক কাজাক আমি হাই হাক্তর রগ চরাই রকনি ফুরংমঙ্গ কু কারিকুলার একটিভিটিস ইংখেবা সাপ্লিমেন্টারি গবাং মা ফুরংমং এবা সরংমং ইয়াফার জাক দঙ্গ আবুনি বিশিংতেই রংনি বিশিংতেইবো তেই রং সরঙ্গী তংতে তংতে নো গুবুননি সামুং বো গরং অংগী জেবা কাইসা সামুং নো থং খলাইয়ে অংগেখেবা জেবা কাইসা সামুংনি বখিরি নো সতনৈ বো লাংমানি বুবাক অংগেখেবা লাংমানি আজিমং লামনো বো সরামুই মানো আবেজিপনি কক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি আ জরাও বাঁচা হুই বো রংনি বিশি

ब्रिरोकनि गोरों ब्रिरोकनि गोरों बाय ब ओ जरागो बिनि आ जरागो ब्रिरोकनो बाहायके दिसाखा आबुनि वानसुकमुं दादाक्सिदाक्सों रबीन्द्रनाथ नुनो नुगु रांसोनि दाखो बुखु अ जरागो खनाय नाहारलायन तांसा रोजाबमुं रबीन्द्रनि रोजाबमुंनो कक बरबाय

थिकलै तंगमायो आसिक जरा तै ब्रो सिपाय गिजिं सिपाय अजमा गिजिं असमा नांलेखा सुवाग नंगलाय देरिया कक सालाय बुबाग्रा रोमनि दक्षिण बेलायखेवाना जाखा वाना जामुक लायखेता साग गिजिं साग अप्तिखेय बुलायमा तलमा थलायमा नुगै साग गिजिं सागनि बेरो असबा नांलायमु बुबाग्रा दक्षिणनि बुमा खांग तैसमु सिलिरि ओय बिनि साग बलायमु याकुंबाय कादुलिरिखा बहाबतेहनी निजनो खा कुबी कुबी नहाई नंखा बिन मखांग तुसुमन सेली रेखा स्वभाव साई खलनै माने 2000 नि गोबां सिपाय ते सेंग्रा र थै थांबाय के आरो तंगै तंखाय बिन बसैले कहामंगनाय आबो हाबबाग्रा खाबाय खुकबाय कहामके न रमै मांखा आ जागाव बसैते बतंग दंसिनाय तामुङै हिनबा जदु बसं थैकुमु बायमा हाय बिनि सिपाय ते सेंग्रा एबा बिर रगबो थैबाय के साखिजिं सां नांलायै आपते थिबेका बबखा मिथिक जाखा बाहायजानो उन्न होनो आबती नां सित्रा नांनानि मुफिलि कायसाफानो जे नांलिया बुफुनो नां थांगाब साइज मानसलाबलिया आ कग्र वान सुमिसिं वान सुगै बुबाग्रा बेलाय वाना जागनानि नांखा ब वान सुना नांखा आ खलंमाव राज्य सेंमा या गुलन बिनि फान ब बांखा आबायन सेंक्राक कतर कतर रगब माने कतर कतर बिर रग मुफिलि कायसान बिसिंग बेबाग थैब थांबाय खे आबनि बागिन ब आहा हामिया जाखरै खलंमानि उत्तर गालाबखा ग थांनानै बखा थनका आरोते तुङिमांला बरमैमांखा आसेगै सिबो सिपाय नांलायखा थैलायखा आरो तंनानि उनको हामलिया हा खना थांगानो सनि थांगानो हिनमां हिनमांन बुबाग्रा राजाग्र सेवै मानलांलिया थांना दं मुसुंजागो थिक न फियाबा तिनि खना हिनमांसे ब सेवजि मानलांलिया राज्य सेया सानि न तिप्रा हाबुबाग्रा दक्षिण कालनि निबागै अहा तन्थगिया करै आयं मासिङ थाङै पाइजाव माने बथै पाइजा खाता आयं मासिङ थां पाइ बते राज्य याकार मुंसे गरिखा आमन सङा बथै पाइखा दाबु राजा दक्षिण द थैखा दाबु तेखैसा खतल चेंजाखा आमुंखा दक्षिण बसला तय दक्षिणि खतल अमने कक सानाथै साइमानो तिप्रा हाबुबाग्रा दक्षिण थैजालांखा बिनि बसाजला खरक्सा तंग मु तय दक्षिण बुफा थैमाइया गुल बन तिप्राहानि बुबाग्रा चंजाखा ओ तय दक्षिण बुफानि बसाजला अक्रा ब आलायदा फान गोनां तै चबा ब आसेंन गोरों फान सेंनि लगे चबाव बिनि याकुमुन तंथारु मिनि तंमुं सामुं ब काहाम तं कथार एबा तै मुङा करक तै तंथानि बिनि वानसुमुं ब आसेंन तङ ब धर्मनि बरक जासे धर्मदति तंनाय मोतायातैन तै तंनाय ब मुंसाजों सामुं थांनाखाय बेलायखो वानसगु ककंखा ब बेलाय खा कुफुर खा कसं थे खा कथार उबतै खा कथार बरक खा कसं बरक बा खा कुफुर बरक नुखथायानो हिनिमानता आपतेहाय बरक बा खरक बसे तंबा बुफा थिमायागुल ब गोजां गोजां खेन बिनि बुबाग्रा सामुं हुमुं तांलांखा होनै सावैमानखा आफ्रु ब मणिपुर बुबाग्रानि बसाजोंनो कायजागो ओ तय दक्षिण राजा मणिपुर बसाजों कायजाखा आ जरानि सिमिन मणिपुर बाय तिप्रानि बिसिंग कायलैमानि हालक पुइला चेंजागो अबसिनि मुइतुनारंगमानि मारंगमानि कक तय दक्षिण पुइला मणिपुर बाय कायजांमानि बिसिंति गोरोंलायो ते आफ्रुन मणिपुर बाय चिनि बिसिंग मणिपुरनि बरक बाय चिनि बिसिंग हालक काहाम चेंलायो ब राजानि बसाजोंनो ब कायजाखा मणिपुरना आर राजानि बुमुंले सावैमान हरलिया आबो सिजागलिया तास राजमाला हब आबो साइमालिया राजमाला ऐ सम्पर्क निर दक्षिणनि बसाजला खरक्सा तंग बिनि मुं सुदक्षिण आना दक्षिणे तय दक्षिणनि बसाजला से आमो सुदक्षिण जेला हामथानि तंगमुं हामथानि बन बुइबे सुरना करै ब सागबै मांगबाय कुसु कतर तै नायथुङाबो बुइनि बारा ओ सुदक्षिणता तय दक्षिणनि बसला बब साल कबाम रमिन लोक पालै लांखा ब थै पाइमानि यागुलन तिप्राहा स्वां बुवां सानानि चेंगो कंखा दक्षिण तय दक्षिण सुदक्षिण अ खरकताम कुसुंगताम राजा सामनि यागुल पाइथाक जे सुदक्षिण थिमे यागुल तिप्राहा स्वां बुवांनि नांगो आमो राजमालाव रमैचें साइमां खाता सुदक्षिणि बसलानि मुं तर दक्षिण ब बुफा थिमेनि यागुल राजांखा बब साल गोबां मरमै राइजो रोगनो राइजो चालौलांखा तब तर दक्षिणि बसाचेला धर्म तर बुफा थिमायागुल ब तिप्रानि बुबाग्रा हायाव आसुखा बब साल गोबां मारमै राजा सालांखा आबनो कारै लोक पालै मुं सामुंब काहामखेन तांलांखा त
তাই তিপ্রানী

नुकफिरका आपति खलाइ मतै खैन हामु बथांगबिका राजाबो न नुकफिरका अरब कखथेस सानन यांगो आबंखा राजानि मकलनि बागै मुसिलि दफनि लुकुरंनि याक्तै बरग रमरिमानि बागैन आ तिप्रा राजानि मुंगाफुर मैसिलि फारजागो अंगना तंगमनि खा कबा सालसा राजा मैसिलि बुरा अंग तै जरेनि राइजेरगै बबो सालसा अन्नखा तलनि हाइया करै आयंग मासिंगो थाङै पायु बुबाग्रा मैसिलि थैमायागुल बुफायं चैतुंग फा तिप्रानि राजंखा ब तैसं फा एबा तेजं फा हनैब सिनिजागै तंग आब राजमाला तै सावैमान हरखाता बिनि बसाजला नरेन्द्र तै बुसुक इन्द्रकित इन्द्रकितिनि बसामासा आसैख्या बिनि बुमुं बिमान बबेलाय रंमारि गोनां तंगै तंगमानि फियाबा बुफानुल ब तिप्रानि राजां लांखा बन पाइमारा सिनिब लुकुरक सिनिलायो बब सालकबां रमै लुकु पालायलांखा बिनि बसाजला जसराज ब राजंखा तै बब बेलाय याकपाई काहामनि सिनेमुंग्रिलांखा राज्य सालुखानि अकक ब खनाका बिनि बसाजलांखा बंग ब बंगनि महाराजों लांखा अ बंगनि महाराजुङु हनैन बिनि मुं बंग हाइफानुङै मानु बिनि बसलानि मुं गंगाराय माने बंगनि बसलानि मुं गंगाराय बिनि बसला साक्रुराय कंखा गंगारायनि बसलानि मुं साक्रुराय बब रायजोनि पन्जा माननांखा बफा थैमान जागुल ब राजानि सिंहासन आजुगै लुकु पालायलांखा तामसे कक हासालोलांखा ब शुक्रराय एबा चित्रसेन हिनि ब सिनिजागै दङ साक्रुराय ब शुक्रराय हिनबो सिनिजागो रमदे मैसिले राजानि खतल आमरन पाइखा दो मैसिले राजानि कक सातानि बिनुल जेराज किसु किसु राजुमा कोर आमर साइपेख्या ताबु प्रतीत खतल चेंजाखा आबंका शुक्ररायनि बसलाता प्रतीत अ शुक्ररायनि बसासला खरक्सा आबनि मुं प्रतीत हेरम्ब बुबा ग्राबाय ब किचिं कामैनि हालक करंखा अ प्रतीत हेरम्ब राजा आदं खरक्सा रिहरका तिप्रा राजानि थानिव साहरका बरक्त बसं कायसानि न फाइलेमानि कपाल हामियानि बागैसे बसं कायसाव राजा खरंनै ओंनानि नांगौ हेरम्ब राजा मु तिप्रा राजा साहरमान कक्ता दाबो साका जोंबा ताखुक बाय ताखुक जे गलायलायो आपतिखे ताखुंनै सालबोसोते कागै दंलायसिनाय फियाबा जिनि बिसिंग कागलायमुं केबेंलायमुं आपतिर कुरै आपति नुखाय जिनि बागै बुसु बुसा नायरक बेबां न किरिजाक बायन तमुन केबेमुं कसमुं तंलायखैता हंकाय तो किरिजाक बायग्ला केबेमुं कसमुं कुरै हंकाय बुइ तो किरिजाक बाय ताखुंनै तमुं थामसा हंगायबा हेरम्ब राजा बाय तिप्रा राजा तो हंकाय नसे थै करंलायो बसं कासेन बरक्से हिनि मानो जों खरंनिन तंथकचा तखै राजंगै राज्य बाग बुखलायै तंलायेन अक हेरम्ब राजा साकाता हेरम्ब राजानि अप्ति कक काहाम खनाबै तिप्रा राजा माने शुक्ररायनि बसाजला जे राजाउनाय प्रतीत आबो बेलायके हामजाखा बहनका आता एबा ताखुक ताखुअकरा अकक साका आबोसि कक आपति खे चिनि कक तलांगै हेरम्बनि बुबाग्रा दं थाङै पाइख्या बिनि बुखुंनि ककलाङैता हेरम्बनि बुबाग्रा जा दं बो थाङै पाइख्या आबोनि यागुल तिप्रा राजा ताखुअकरा बाय मालायना थांग ताखुअकरा माने हेरम्ब मालायना थाङाता राजा खरंनै गोबांमा कक गोथै गोथै सालायै खरक्सानो ते खरक्सा बोखाबायन लामजाक सगलायख्या खरंनो नै गोरोंसाव आसुगै माया खरक्सालायख्या हा करंनै दि कनि कसार आरिब बलायख्या गोजां ततखे राज्योनि सामुं तांगै तंलायनानि कक ब जाबलायख आहैखैयै ताखु बाय ताखु कक सालामै हायखैन हेरम्ब राजाबाय त्रिपुरानि राजा बर कक जाबलायख्या ताखुनै थांजाक आसुलायै जरा कायसेसे गफान केबुनि आरि केब बारिया अक ब जाबलायख्या तैसि अबति सुमाय गराग बरक तांलायख्या जरानि फेरक लायै तखाफानो कुपुरनि थांथुन हाइफान बर केबुनि आरि केब बारग्लाक अबति कक अक ब्रक सुमाय तांलायख्या अबब सालायख्या नों बायां सुमाय कत तांलायमानि तमुं न नारक जायगा हनखे एबा सुमाय सोबाय खिबि जाखाय जिनि बसं कमलै थांथुन थै थैकुमै थांबायथुन आपतै किरिमा सिंजा सुमाय रब ब्रक तांलायख्या बाय त्रिपुरानि राजा गोथालायमानि कक कक साबलायमानि कक सुमाय तांलायमानि कक औ कक रक गुबुनि हा बुबाग्रानि राजा रक खानाबायख्या आक कक खानावै ब्रक वाना कतर वाना जाग्लायख्या हेरम्बनि राजानि पूब उत्तर गेलाव तंनाय तंग कामाख्या माने

0: रासमला नि कक लाइभ माने कथमा रासमला नि कक सिं खनामन बिचिन नि ताबो ते कैसे समंग रासमला नि सिमिनो रासमला ओ बु बुबगरा नि मंगो पुइला कक बर कक थाय नुकजाक बो बुबगरा नि मंगो पुइला कक बर कक थाय सिं सायमान बा बु बुबगरा नि मंगो कक बर कक थाय तंगो नि सायमान हेलो
1: हेलो
0: लाम सगोस
1: देवर
0: कहाँ सामुखा ए ताको सादिक प्रश्न कांके बो बुबग्रानी मुंगो पुला कक बर कक थाय नुकजा ए द बेलाय हम्बा इंके ते सब तम कक दुग ददी फाट फाट के क्रंग दी सोंमंग के ब बबाग्रानी मुंग पुइला कक बर कक थाय नुकजा हेलो चिनि लाइव मा रासमाला रगिनै सिं सायमानो चिनि लाइव मा ओ 184 जना राजारनि मुं ताबो तमनि राजा बाय हिंगा के जो 86 जना 184 जनानि राजा नि मुं सिं सायमानो आबोनो बिसिं ब बबाग्रानी मुंग कक बर कक थाय पुइला नुकजाक नै सायमान नरक तुमुं सायमान खांगांके कक दुबाय क्रंदि आं नरक तो नरक नि खनातक जमार सामुं खनाना जायथुगोन हेलो ककरे कादोंनि थांगा ददि फाट फाट के कक दुबाय क्रंदि सों सायमानो छेचल्लिस तम हाइकमा फिल ब्रिचि दग गहकाके बबगरा त्रिपुर आबुन जागुल तंग बस्ला त्रिलिसन आबुन जागुल तंग बस्ला दक्षिण आबुन जागुल तंग बस्ला तय दक्षिण थाइसिङ जे दक्षिणनि बस्लानि मुं तम तय दक्षिण गाताबु कखे बु बबगरानि मुंग पुइला कक बर कक नु सों नुगैमान हेलो
1: हेलो दरा
0: लाम सगो साबंका
1: जी मैं कहाँ वाले चीज़ नो से जो कोई वाले चले
0: ए सादी
1: आप उनके त्रिलोचन अनि कोई जिंक ना को ब्रो
0: त्रिलोचन दलोगी तो त्रिलोचन जा त्रिलोचन नी बसला बसला नी बसला तो इधर कीन तब वो सब तो नहीं है ना कॉक दुगा हेलो कॉक करे ते सब तो कॉक दुगो फिया तीन ने रासमाला जेफ्रो सजा को रासमाला वो सजा का पुइला कॉक बरो और बोबा कराने मुंगो नुकजा को हमने नहीं साइकनार का हेलो
2: हेलो
0: ए
2: कॉक बरो अंको बुम्बई कॉक बरो कॉक थोंगनी आवश्यक
0: है बुम्बई कॉक बरो कॉक थाई तुंगो
2: अंके

0: दो।
1: यांग नगो से बीती करीखु हानुमी नगो बुफ्रु थांगनानी
2: तामो बमोती बीती करीबे आता संप्रो
0: सेरायनाने बरक मान्याखो हाइपानो ताबुगले मानछिने हने चिनि बेजवा साले सालांका सिदो आबु नगो सखबाय खाइसि सायमानछिनाय
3: चिनि बताबुक सखजरा इंगिया खनोता हनो ताबुक कुमै कत संनि नगो थांगै फायमाबो आबुनि बागै न थांगै फालाय मानता
0: हाके बाहाजा सामुंदा साबो खासा
2: अंग्या बासै ताबुंनि जरावो जराय खरक्सा खरक्सा न तुबुनानि आबो बेलायखे ककसाले नखलायखा
1: ताम सापुंखि नर खायां सेराय तंगो हनै थांलाय मानि दा तामो
2: जराय खरक्सा तंगो सालायनाय फैदि हनै कुमै कत साहुरिनो थांगै मा फैलाय मानि ता
0: तामसा गथलालिया ता
3: आबो अंग्या बासै जेरानि बुमा बुफासं बेलायखे कक गबां गजा
2: आंबो बेजवा बायनो किसा मालायनाय हनै दङ आता खोनासुग रगो थाङै किसा मालाय सेमा फायग्रानाय
1: नरक फायमानि किच्छा सिगांद्रब न बेजवासि नं थांता
0: दाइसा सिगां सखबायखान नरक सिनो नगन माला सेमान खामुता
3: थांनानै हिंखाय दाबुक सारिगोन थाङै मालाय फायदि आबो बिनि याक दैया साग ओंगलाखा
2: हाइके सों तै लेस लेलिया आता सम्प्रमथै बासै बेजनि कखनो सोंनानै हनैन नंनि नगमा फायमानि ता
0: तामुनिसा फायगाबा दै रग दुमा रग सिमिपानो नोङै थांलायसिदिता
1: सिदु आबो ताम हनै ककनो सावै तंखना
3: आता बासै ओंखा दै दुमा रग ता हिसिदि थानो थांलायग्रा सिनो
2: दै सालसा फायै दै दुमानो गारै माइबो जाफायनाय दै नुबो नुफायनाय आता सम्प्रमते बासै सोंताबु मानो मा हिमग्रा सिनाय
0: आमो ताम हनमानि ककसा हनो
3: हानो मा ओंलायग्रा सिनाय बासै बुसिया तांसिदि
1: द आसोगसे बेजवा हांखायबा उलताय सासा मांलायसिनायता
2: आबुनो कखे आता सम्प्रम जों बासलायग्राखा हायखे
0: द आकन
4: जिपरक बेंग थांका ए जिपरक
5: आं यांगो से तय
4: आइ गोताम खायत
5: माइरां हान्ता हुइ दङ तय
4: ताबु ब हुबाया को हाइदा डाक्टि हुबाय दि हुबाय खै कारियानि माइ उराक्सिनि कारि ओइ लामख्लाय रग्रा दि

0: प्लीज।
1: सेवा परमो धर्म है, ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है। भारत के अनेक आध्यात्मिक आंदोलनों ने अंततः स्वयं को मानव सेवा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया है। मुझे खुशी है कि आर्ट ऑफ लिविंग के हर प्रयास में सेवा की इसी भावना का प्रतिबिंब नजर आता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एन रंगसामिन्न पुडुचेरी मंत्रक राहनी सीतखा बनत सीतकमानी उल लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन केन्द्रबाय नाइकलजाक हमसायो कैसाकताल हाफां खाना बगे मुसांग रंगसामिन्न जारखा अमेटाल बुस्कां सालसी थामो मुसां रंगसामी मंत्रक रांगै सुमाय तांगानो रिंकक संलाय नगो तुंगमा जरानी सुटीव हाक्तर गनाङै जत रिंनक रगनो भारतनि कक सामार केम नैसाय नैसिदक न जुगालिवानो हातिबारसा रमै अ केम फरिनाय रकनि बायथांनि सिनिमुं कक बथफ बांग्रमा तंगमुं चामुंनि कगलम कगलाम ताय हुकुमुन साइमान्ना न तुइ जुदा जुदाय इंटर एक्टिव तांगबुटांगनि याक्ति भारतनि जुदा जुदा मानि कक बाय फुइला बेरमो कक सालायनायनि सेप सिनामानो सोमनाथ मोताय नग्न सुनामफिर माने बिसि स्निजिबा पुं सकमान रोगै खोना सोमनाथ अमृत बेरामन संसार जागोन मन्त्रक्र मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी सोमनाथ अमृत बेरामो मानजागोन बखना त्रिवेणी हेलिपेटनि सेंक्राक हामिर जि गुहिलनि मां हलं जरा किलोमिटार कायसा रमै मेगा रोड सुव तैफां गाने बिनि बेरायमा जराव मन्त्री बख्रक सोमनाथ मोताय नग कुम्बा बिसेक बाना पुजी लाइमाताय मोतायरिमा सामु रक्न खलायनो वानसुक गोथारनि मेल रगो संसा जाकमानि उल मन्त्री बख्रक सदभावना पान्थ रगो लुकुथुम कायसो कक नारगानो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अककतुमा खनाय तंबायो आकाशवाणी नि कक्तुमा रक्न आपडेट मानानि बागै लग इन खलायदि www.newsonair.com न्यूज अन एयर एप्स ताय ट्विटर बाय फेसबुक प्लेटफर्म अब AIR न्यूज एलार्ट्स हम यूट्यूब हम नाइडि न्यूज अन एयर अफिशियल हम आपनों कारीब आकाशवाणी आगरतला केन्द्र ने कक्तुमा रखना आपडेट मानानी हेनके ट्विटर एवं एक्स हेन्डल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक AIR न्यूज आगरतला तथा यूट्यूब हम आकाशवाणी न्यूज आगरतला हम नायना नांगानो हास्ते संबारी कमिशन जिला परिषद एवं TTAADC नि विलेज कमिटी नि संबारी नि बागै तियारंगै तंखा हास्ते संबारी कमिशन खनाफ बुट केन्द्र रकनी संसाग्रामा बुमुं बुटां न कारीवानो खनानि सिमिन बुट यासाकमा थाय रकनी संसाग्रामा बुमुं बुटां न तुइ सानमुं ताय कासुमुंनि सामुं सें सा जागोनो आबो अ मार्च तालनि बुस्कां सालसिबा जरा तुइ सलिवानो सानमुं ताय कासुमुंनि सामुं पाइसुगानो अ मे तालनि बुस्कां सालसी दग सालमारी ओ ब्लेस कमिटी रकनी बुट यासाकमा थाय रकनी फाइथाक बुमुं बुतांकारि जागोन अ मे तालनि बुस्कां सालसी जारो बिसि गोबांमा सोकांनि लाइबुमा उराम उराम सप्रब जाकमा ताय कायसा मोथां फिरनानि थागियानि मारि कायसा ओंखा सोमनाथ गुजरातनि प्रभास पथन्न तंनाय अ गोथार ज्योतिर्लिंग कायसा मोतायनक सिमिया आबो भारतनि तंरोंनि कायसा गोथार मांगप्लि आबोनो तुइ कायसा ककथुम खोनाबायदि
2: मार मार सोबायजाखा फिया कुनफुर्न सोमनाथनि वानसुगमा गोथार गुमाय थांगियाखौ चप्रक जागमानि ताय सोबाय खरुबमानि उलब शंख सुबजागमा ताय खुलुमुंनि बिसिंतै जाति मोसोंजाखा लाइबुमानि मारिन' ताय पुइतुन' मेचेनि मानिया इयगमानि उल सर्दार बल्लभ भाई पेटेलनि सोमाय ग्राक गोदालखे सोमनाथ मोताय नग्न सोनांफिर जाखा चि चुकुरा बाचिसा बिसिव राष्ट्रभक्रक राजेन्द्र प्रसादनि बुस्कांग तायसा गोथार लाइबुमानि अ थायन' फियग जाखा आबो तंगमानि बसंनि साग बरमनि मुथांफिरमुं तिनि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नुइ साय नैजिदक नैजिस्नि व संसाजागै तंग साय बिसिनि सयमुं हुकुमु ताय गोथार फला फाननि लाइबुमा दर्शन अभिजात्रा हुकुमु मेल रों ताय श्री सितनि याक्तै हाकतर गनांगै चिनि तंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह

0: दिख रहा है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने

0: पिछले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के भिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पाद

शब्दों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स